0: माउंट रोस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आप 21 जून यानी कि कल शाम 3 बजे डेविज फ्यूनरल केयर 400 डोमिनियन रोड माउंट ईडन जा सकते हैं और अंतिम संस्कार बाद में फिजी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर कॉल कर सकते हैं। भूरा और जोखन लिमिटेड सूबा के स्वर्गीय जयनारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन, एंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां, होटन स्ट्रीट सूबा फिजी के भूतपूर्व निवासी, माउंट रोस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आप 21st ऑफ जून यानी कि कल शाम 3 बजे डेविस फ्यूनरल केयर 400 डोमिनियन रोड माउंट ईडन जा सकते हैं और अंतिम संस्कार बाद में फिजी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर कॉल कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: वेदर अपडेट।
0: आज का मौसम ठीक ठाक ही रहने वाला है। मेनली फाइन देन क्लाउड इंक्रीजिंग लाइट टुडे। लाइट विंड्स आप महसूस करने वाले हैं। हाई ऑफ 16 डिग्रीज आज टेम्परेचर रहने वाला है दिन में और रात को टेम्परेचर इज गोना गेट एज लो एज 11 डिग्री। सनसेट आज का 5:13 PM पर होगा।

जब आप अपने मन को डर के बजाय भरोसे से, शक के बजाय मकसद से भरते हैं तो नई संभावनाएं नजर आने लगती हैं, आगे का रास्ता साफ हो जाता है और आपका दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसी थॉट के साथ आइए शुरू करते हैं 22 जून। 20 तारीख जून है आज और रेडियो पब का सफर अभी से लेकर शाम 6 बजे के बीच में मैं जिकाश इस सफर में आपके साथ में शामिल हो चुका हूँ। आशा करते हैं कि यू आर फीलिंग वेल एंड पूरी तरह से फिट होंगे। अगर नहीं भी हैं तो भाई आप स्वास्थ्य लाभ करते रहिएगा और हमारे साथ यूं ही जुड़ जाए ताकि आपको हम मनोरंजन के शिखर तक पहुँचाते हुए आज का ये दिन बहुत ही एन्जॉयबल बनाने वाले हैं। ढेर सारी बातें करनी है अबाउट अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स, अ लॉट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स हैपनिंग ऑल अराउंड द ग्लोब एंड इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स फैनेटिक तो भाई बहुत सारी जानकारियाँ आपसे हमें लेनी है और आपको हमें बहुत सारी जानकारियाँ देनी भी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लोकली, आज सुपर रग्बी पैसिफिक का ग्रैंड फिनाले होने वाला है डाउन इन वेलिंगटन, जहाँ पर द माइटी चीफ्स और हरिकन्स ये आमना सामना करेंगे और इस साल एक नया विजेता आप देखने वाले हैं। 13 बार क्रूसेडर्स ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। आज हिस्ट्री में एक नया नाम या फिर एक ऐसा नाम जुड़ने वाला है जो कई सालों से कोशिश कर रही है टू गेट दिस ट्रॉफी इनटू देयर होम टाउन। तो क्या द माइटी चीफ्स आज ये कर दिखाएंगी या फिर द हरिकन्स जो इस साल बहुत ही टॉप फॉर्म में रही है, आज ये अपने होम ग्राउंड में अपने दर्शकों के सामने एक जीत हासिल कर पाएंगी, तो इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देते चलेंगे। प्लस आपके प्रेडिक्शंस भी हम लेना चाहेंगे और फिर सोका में आज क्या कुछ हुआ है सुबह, आज बाद में कौन से खेल होने वाले हैं और ब्लैक स्टिक्स, वेंटेज ब्लैक स्टिक्स आज क्या कारनामा करके दिखाने वाली है, ये भी जानकारी आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। तो बस एक भरा पूरा कार्यक्रम आपके लिए हम आज लेकर आए हुए हैं। 104.2 FM और रोबा के जरिए मैं जिकाश आपके साथ में जुड़ चुका हूँ। बस यूं ही हमारे साथ में आप जुड़े रहे। 5599 इज़ आवर प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप मैसेज करके हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं या फिर आप कॉल करके कुछ बताना चाहते हैं। 0800-004-866 पर आप नंबर मिलाइए और हमसे आप बातें कर सकते हैं ऑन या ऑफ या जो भी आप चाहे। बस आपका साथ देने के लिए यहाँ पर शाम 6 तक हम शामिल हो चुके हैं। क्योरा नमस्कार।

104.2 FM और रोवर पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ थ्रू रेडियो पब. आप इस थ्रू हम आप इस कार्यक्रम का मज़ा ले रहे हैं. कुछ जानकारियाँ हैं हमारे हाथ में, आपके साथ में हम शेयर करने चाहते हैं. ऑकलैंड फिजी इलेक्शंस वोटर रजिस्ट्रेशंस, अगर आप फिजी से हैं एंड यू आर अ फिजियन सिटीजन तो आपको तो मालूम होगा कि इस साल फिजी में इलेक्शंस होने वाला है और इसके लिए वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव द सेकेंड वन इज़ हैपनिंग बिटवीन फ्राइडे 24th एंड 26th जून. दिन में 12 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में मंगरे सेंटर पार्क, मंगरे सेंटर पार्क 101 रॉबर्टसन रोड मंगरे में सेकंड वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव होने वाला है. तो इसके लिए आप ज़रूर समय निकालें. वैसे मंगरे में 23 जून को फाले पैसिफिका 23 वोटर स्ट्रीट में यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन होगा. हैमिल्टन में सैटरडे एंड संडे 27 एंड 28 जून को 37 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट फेयरफील्ड में शाम 3 से 9 बजे के बीच में वोटर रजिस्ट्रेशन होने वाला है. रोतोरुआ में अगर आप हैं तो 29th एंड 30th जून को मेथोडिस्ट चर्च हॉल 187 ओल्ड टोपो रोड में आप जा सकते हैं 3 to 9 PM के बीच में. नेपिया में है तो 1 जुलाई को यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन होगा 83 टेट ड्राइव ग्रीन मेडोज में शाम 6 से रात 10 बजे के बीच में. पाम्स्टन नॉर्थ में 2 जुलाई को वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव होने वाला है. वेन्यू आपके लिए हम जैसे हमें पता चलेगा आपको हम बताएंगे. वैसे शाम 3 से 9 बजे के बीच में वोटर रजिस्ट्रेशन पाम्स्टन नॉर्थ में होगा. और वेलिंगटन में 3rd और 4th जुलाई को वेस्ली मेथोडिस्ट चर्च तारानाकी रोड में दिन में 12 से लेकर शाम 8 बजे के बीच में सेकंड वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव होने वाला है फॉर द फिजी इलेक्शंस. वैसे रामलीला के बारे में हमने आपको बताया है पिछले सप्ताह और उससे पहले वाले सप्ताह, जहां पर हम वी आर द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर फॉर रामलीला 2026. 8 अगस्त को ये रामलीला होने वाला है बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़े पैमाने पर. और इसके लिए डिटेल्स हम आप तक शेयर करते रहेंगे. रिहर्सल शुरू हो चुके हैं और इसके कुछ झलकियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे थ्रू आवर सोशल्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक. तो कीप इन आई आउट फॉर ऑल दी अपडेट्स अबाउट रामलीला. एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है इन एसोसिएशन विथ न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट. अगर आपको जानकारी और भी चाहिए रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप, क्योंकि यहाँ पर स्टॉल्स भी लगने वाले हैं, अगर आपको स्टॉल्स चाहिए यू कैन बुक दैट बाय कॉलिंग मास्टर अशोक ऑन 021-179-5459 पर. अगर आपके पास भी कुछ जानकारियाँ हैं कम्युनिटी इवेंट से जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो गेट इन टच विद अस. हमारे पास आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल्स भेज सकते हैं ऑन buzz@hamfm.com पर. एंड आपकी जानकारियाँ तमाम लोगों तक, आपके टारगेट ऑडियंस तक हम ज़रूर पहुँचाने वाले हैं. You're listening to Chikash.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। ईट बेटर लिव बेटर नाउ विद कशिश चक्की फ्रेश आटा एंड मल्टीग्रेन आटा, अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नेशन वाइड। www.kashishfoods.co.nz।
2: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
4: TradeDepot.co.nz.
5: Get $299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers, $299. Washing machines, $299. Dishwashers, $299. Ovens, $299. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
4: TradeDepot.co.nz.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
9: Do you need a washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? Big Saves Big Whiteware deals are on today. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $398, or a Samsung 310-litre fridge only $899. We have heaps of stock. Take it home today. Get New Zealand's best value whiteware from only $398. Plus get a massive 30 months interest-free store-wide. T's, C's and credit criteria apply, only at Big Save.

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: Aaj hai 20 tarikh June and around 14 days baad the celebrations for Matariki festival ye shuru ho jayenge. To iske liye kai sari jankariyan humne aapke sath share ki thi pichle saptah Radio Pub mein aur Sunday Night Melodies mein. To aaj ek bar fir se kuch aur activities ke bare mein hum aapko batayenge jahan par jaakar you can celebrate the essence of Matariki festival. Matariki festival hai kya ye aap jante to hai na? Well, it's very important for you to know अगर आप न्यूजीलैंड को अपना घर मानते हैं. यहाँ पर आए गए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, कमाते हैं, खाते हैं और घर ले लिया है. You need to incorporate या फिर you need to get along with the local cultures and the festivals that are celebrated here in New Zealand. तो मातरिकी फेस्टिवल के बारे में आपको हम कुछ थोड़ी मोटी जानकारियाँ प्रदान करते चलेंगे. वैसे आपने अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे फ़ोटोज़ देखे होंगे, पीपल जो फ़ोटोज़ ले रहे हैं विथ सम ब्यूटिफुल बैकड्रॉप ऑफ फेरी लाइट्स. If you have seen them, you would know what I'm talking about. तो ये भाई कहाँ पर है? This is Winter Light Cathedral. This is in Auckland City Centre. कहाँ पर जाकर आप magical snaps ले सकते हैं with you, with your loved ones? इसके बारे में जानकारी बस थोड़ी देर में आपको हम प्रदान करने वाले हैं. फिलहाल आइए enjoy करते हैं Ed Sheeran की आवाज़.

The next public holiday on our calendar here in New Zealand is the Matariki Day, which is on the 10th of July this year. Aur Matariki Day kyu manaya jata hai? Do you know? Kya khas baat hai Matariki Day mein, ya phir kyu itna mahatvapurn hai Matariki Day for the Maori people? Ye sawal aapse hum kar rahe hain. Aap hame bataye ki Matariki Day kyu celebrate kiya jata hai? आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे लिए दिवाली है या फिर क्रिसमस है या फिर जो हिंदू न्यू ईयर है या फिर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर न्यू ईयर है, ऐसा ही मातृकी डे क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप हमें बताओ. व्हाई डज इट हैव सो मच सिग्निफिकेंस और माओरी कल्चर में मातृकी फेस्टिवल क्या सिग्निफाई करता है. 5599 पर अपना जवाब हमारे पास भेजे अपने नाम के साथ. ऑफकोर्स और भी जानकारी इसके बारे में आपको हम प्रदान करते रहेंगे. वैसे फिजी में फिजी फैक्ट आज डे 2 में प्रवेश कर चुका है एंड करंटली नसीनू फुटबॉल क्लब और ननरोंगा फुटबॉल क्लब आर इन द फील्ड इन द फर्स्ट मैच ऑफ डे 2. कल 4 खेल हुए डे 1 में. लोटुका ने नसीनू को 4-1 से हराया है, बा ने ननरोंगा को 4-1 से हराया, रेवा ने नाबुआ को 2-1 से पराजित किया है और लंबासा और सुबा फुटबॉल क्लब के बीच में जो खेल हुआ इसमें दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर रह रही है. सवाल यह है कि माओरी कल्चर में मातृकी डे क्या सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेशंस का किस तरह का है, क्यों मातृकी डे मनाया जाता है. 5599 पर अपना जवाब हमारे पास आप भेजें.

0: दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

पूरे पैमाने पर जारी है। डे टू का फर्स्ट मैच ये ऑलमोस्ट हाफ टाइम तक पहुंच चुका है, जिसमें नसीनू और ननरोंगा खेल रहे हैं। एंड नसीनू का रायता फैल गया है क्योंकि ननरोंगा ने 39th मिनट में एक गोल बना लिया है। तो एज इट स्टैंड्स नाउ, ननरोंगा 1 नसीनू 0। सवाल हमने किया है कि मतरिकी फेस्टिवल क्या सिग्निफाई करता है। 5599 पर अपना जवाब हमारे पास भेजें।

0: You're listening to Chikash.
1: ऑलराइट FIH हॉकी वीमेंस नेशंस कप ये पूरे पैमाने पर जारी है नॉर्थ हार्बर में और ये फाइनल्स के खेल होने वाले हैं इसके फाइनल के खेल होने वाले हैं टुमारो आज द रिमाइंडर ऑफ द पूल मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद में कौन सी टीम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होंगी ये पता लग जाएगा वैसे फिलहाल खेल हो रहा है बिटवीन जापान एंड फ्रांस और अभी दोनों टीमें एक एक नील से बराबर है और इसके बाद में जो खेल होने वाले हैं आज शाम 1:30 पर कोरिया और यूरुग्वे खेलेंगे इसके बाद इंडिया और चिले ये सेमीफाइनल में खेलने वाली है एट 4 PM और द सेकेंड सेमीफाइनल इज हैपनिंग बिटवीन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स नाउ लुकिंग एट द पूल्स स्टैंडिंग्स और पूल्स में अपनी पूल में इंडिया ने सभी खेलों को जीता है और दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने अपने सभी गेम्स को जीता है तो क्या अपना टॉप फॉर्म बरकरार रखते हुए इंडिया विल क्वालिफाई टू द फाइनल्स विथ न्यूजीलैंड क्या फिर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स जीत कर दे विल बी इन द फाइनल्स तो ये बातें आज शाम 6:30 तक हमें पता लग जानी चाहिए और फिर कल द 17th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट होगा जहां पर लूजर ऑफ द 13th मैच एंड लूजर 14 विल बी प्लेइंग ऑफ इन द 7th एंड 8th पोजीशन उसके बाद 1:30 पर 5th 6th पोजीशन के लिए प्ले ऑफ होगा और फिर कल शाम 4 पर 3rd एंड 4th प्लेस के लिए प्ले ऑफ होगा और फाइनल विल बी हैपनिंग एट 6:30 PM टुमारो तो अपना संडे आप एकदम से खाली रखें एंड मेक योर वे टू नॉर्थ हार्बर स्टेडियम टू सपोर्ट योर फेवरेट टीम एंड फॉर मी आई एम बैकिंग द वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन क्योंकि हमारी आउन टीम है एंड ऑफ कोर्स वी वांट देम टू विन टिकट्स आपको मिलने वाले हैं एट hockeynz.flickr.co.nz पर

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: वेलकम बैक टू रेडियो पब, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। वर्ल्ड कप फीफा 2026 ये जारी है एंड करंटली ब्राज़ील एंड हाइती आर बैटलिंग इट आउट। ब्राज़ील दे आर लीडिंग बाय 1-0। इससे पहले जो खेल हुआ स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच में, मोरक्को दे केम आउट विक्टोरियस बाय 1-0। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द पॉइंट्स टेबल, और इफ़ यू फॉलो दिस क्लोजली तो आपको शायद मालूम ही होगा, अगर नहीं तो गौर से देखते हैं कि ग्रुप स्टेजेस में फिलहाल कौन कौन सी टीम लीड कर रही है। वैसे मेक्सिको इज़ द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई थ्रू टू द नॉकआउट स्टेजेस। मेक्सिको ने दे हैव गॉट 2 out of 2 एंड दे आर लीडिंग ग्रुप ए। उसके बाद में साउथ कोरिया ये सेकेंड पोजिशन पर है इन ग्रुप ए। ग्रुप बी में कैनेडा प्लेड 1 game एंड won 1 and drew 1 4 points के साथ में ये पहले पोजीशन पर है इन ग्रुप बी। स्विट्जरलैंड उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है। ग्रुप सी में मोरक्को ने अपना पहला गेम ड्रॉ किया था अगेंस्ट ब्राज़ील और फिर अपना सेकंड गेम जीता है अगेंस्ट स्कॉटलैंड, तो दे आर एट 4 points एज वेल एंड फिलहाल ब्राज़ील लीड कर रही है एंड इफ़ इट स्टेज दिस वे तो ब्राज़ील विल एंड अप विथ 4 points और दे विल बी एट द सेकेंड पोजिशन। ग्रुप डी में USA दे हैव प्लेड 2 and won 2 6 points के साथ ग्रुप डी को USA लीड कर रही है, ऑस्ट्रेलिया जस्ट बिहाइंड USA। ग्रुप ई में जर्मनी प्लेड 1 won 1 और 3 points के साथ ये पहले पोजिशन पर है। गोल डिफरेंस के कारण आइवरी कोस्ट से आगे है इन ग्रुप ई। ग्रुप एफ में स्वीडन इज लीडिंग और ग्रुप जी में न्यूजीलैंड इज लीडिंग क्योंकि गोल्स डिफरेंस में, गोल एवरेज में, और ईरान से ये आगे है न्यूजीलैंड ऑन द फर्स्ट पोजीशन इन ग्रुप जी। ग्रुप एच में यूरुग्वे इज लीडिंग, ग्रुप आई में नॉर्वे इज लीडिंग, ग्रुप जे में अर्जेंटीना लीड कर रही है और ग्रुप के में कोलंबिया इज लीडिंग द पैक और ग्रुप एल में इंग्लैंड इज करंटली ऑन द फर्स्ट पोजीशन।

0: You're listening to Chikash.
1: इंडियन इंक थिएटर कंपनी इनके द्वारा बलून डॉग ये थिएटर परफॉर्मेंस हो रहा है एंड टुडे इज़ द फाइनल डे जो आप यहां पर जाकर इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. टिकट्स आप iticket.co.nz से ले सकते हैं एंड अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन MNZM ही हैज़ रिटर्न टू द स्टेज इन अ वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग. एज आई सेड आज इसका फाइनल व्यूइंग है और आप यहाँ पर जाकर यू कैन एक्सपीरियंस हिज मार्वलस परफॉर्मेंस जहाँ पर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का जो स्टोरी है बिलव स्टोरी बाय रविंद्रनाथ टैगोर काबुलीवाला इसको अडेप्ट किया है इन द 21st सेंचुरी ऑकलैंड सेटिंग में जहाँ पर एक 5 ईयर ओल्ड बच्ची और एक लोनली माइग्रेंट वोका के बीच में दोस्ती हो जाती है और उस दोस्ती को लेकर उस छोटी सी बच्ची की फैमिली को क्या कुछ रियलाइज होता है द अनकम्फर्टेबल ट्रूथ अबाउट देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम. तो दिस ऑसम थिएटर परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत डाली गई है टू गेट टू यू द मास्टरपीस ऑफ ह्यूमर हार्ट लाइव ओरिजिनल म्यूजिक डांस एंड प्योर थिएट्रिकल मैजिक आप विटनेस करने वाले हैं. बलून डॉग इट इज़ हैपनिंग एट क्यू थिएटर इन ऑकलैंड. आज इसका फाइनल चांस है आपके पास कि आज आप जाकर इसको व्यू कर सकें. iticket.co.nz पर आप टिकट्स जाकर ले सकते हैं.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Is your marketing budget feeling the squeeze? You need marketing assets that keep delivering. Great Signage does exactly that. Speedy Signs creates bold, professional signs that draw attention and reinforce your brand every single day. From sharp shop fronts to standout vehicle graphics, they make sure your business gets seen. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz. Try

0: Radio Pub.
1: एक बजकर 21 मिनट हो चुका है। हमने सवाल आपसे किया था अबाउट मातरी की, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इन द मौरी कल्चर। वेल, मातरीकी इज द मौरी न्यू ईयर एंड मातरीकी इज द मौरी नेम फॉर द प्लेइडीज स्टार क्लस्टर जो दिखाई देता है ड्यूरिंग मिड विंटर मॉर्निंग स्काई में। एंड इट सिग्निफाइज आई हैव ट्रबल विद दिस वर्ड, सिग्निफाइज दैट स्टार्ट ऑफ मौरी न्यू ईयर ते मताही ओ ते ताओ। इन 2026 मातरीकी स्पेंस फ्रॉम जुलाई 8th टिल 11th विद द ऑफिशियल नेशनल पब्लिक हॉलीडे फॉलिंग ऑन फ्राइडे जुलाई 10th। नाउ लगभग 12 लोगों ने जवाब दिया, इसमें से सिर्फ 5 ही लोगों को मालूम था कि मातरीकी इज़ द मौरी न्यू ईयर। एंड आई सीरियसली हैव कंसर्न्स अबाउट दिस। न्यूजीलैंड में रहते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि देर आर सम कंसर्निंग चेंजेस कमिंग टू न्यूजीलैंडर्स, फॉर न्यूजीलैंडर्स या फिर वो लोग जो अब सिटीज़न बनने जा रहे हैं। कुछ कुछ पार्टीज़ ने प्रपोज किया है कि एक एग्ज़ाम होना चाहिए बिफोर पीपल आर ग्रांटेड सिटीजनशिप, जहाँ पर उनसे पूछा जाएगा कि हाउ मच दे एक्चुअली नो अबाउट न्यूजीलैंड। तो भाई, जिस कंट्री को आप अपना घर बनाने जा रहे हैं उस कंट्री के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट टू सेंड आंसर्स टू अस ऑन रेडियो, दिस इज़ फॉर योर जनरल नॉलेज। एंड अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि सिटीजनशिप अटेन करने से पहले एक मैंडेटरी एग्ज़ाम होगा फॉर पीपल हु वांट टू गेट बिकम सिटीजन्स ऑफ न्यूजीलैंड, तो भाई इस कंट्री के बारे में जानना आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो मातरीकी इज़ द मौरी न्यू ईयर जो सेलिब्रेट होता है जब मिड विंटर मॉर्निंग्स में, दैट इज़ इन जुलाई, द प्लेइडीज स्टार क्लस्टर रीअपियर होता है इन द न्यूजीलैंड स्काई। सो दैट्स मातरीकी फॉर यू।

अच्छा खासा वेदर है, आज शनिवार भी है, तो अगर आप भी एकदम से लेजी फील कर रहे हैं, आइए आपके दिमाग की कसरत हम कराते हैं। तो सवाल हमारा गौर से सुने, इसका जवाब हमारे पास आप भेजिएगा 5599 पर। व्हाट इज हाफ ऑफ 6+6? व्हाट इज हाफ ऑफ 6+6? राइट, इसका जवाब आप भेजिए 5599 पर। अपना नाम आप ज़रूर डालें अपने मैसेज में और हमें ये ज़रूर बताएं कि आप फिलहाल कहाँ पर है। What is half of 6+6? इसका जवाब with your name एंड फिलहाल आप कहाँ पर है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जल्द से हमारे पास आप जवाब भेजें।

अभी तक एक भी सही जवाब हमें नहीं मिला है. तो हिंट है कि बडमास या फिर बेडमास रूल आपको फॉलो करना है. व्हाट इज़ हाफ ऑफ 6+6? जवाब हमारे पास भेजे 5599 पर. थोड़ी देर में अपडेट आपको हम देंगे रिगार्डिंग नसीनू एंड ननरोगा के बीच में जो खेल हो रहा है. इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर दी ननरोगा फैंस. खेल ख़त्म होने में बस 15-16 मिनट बाकी हैं. तो क्या आपको लगता है ननरोगा और नसीनू के बीच में स्कोर कितना हुआ है, इस पर जानकारी बस थोड़ी देर में.

0: 10 मिनट रह चुके हैं दो बजने में. कार्यक्रम में फीफा वर्ल्ड कप अपडेट्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं. ब्राजील इज नाउ लीडिंग हाइती बाय 3-0. देर इज इन द फीफा वर्ल्ड कप, जिसके हमने कहा कि इधर फीफा वर्ल्ड कप भी जारी है एंड फिजी में फिजी फैक्ट भी जारी है. तो इफ़ यू आर वॉचिंग फीफा वर्ल्ड कप और उसके बाद में आप फिजी वाला सोका देखते हैं तो इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ये खेल खेले जा रहे हैं. वैसे फिजी में जो गेम हो रहा है नसीनू और ननरोंगा के बीच में, ननरोंगा इज अप बाय 3-0, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक ऑन गोल हुआ है बाय नसीनू एंड दिस हैज़ लेड और पुट ननरोंगा इनटू लीड बाय 3-0. तो आई कैन वेरी कंफर्टेबली से कि ननरोंगा हैज़ दिस वन अंडर देयर बेल्ट. और उधर ब्राज़ील भी हाइती के खिलाफ 3-0 से जीत रहा है. तो ऑफ कोर्स ब्राज़ील विल बी कमिंग आउट विक्टोरियस इन दिस मैच एज वेल. सेकेंड हाफ में खेल चला गया है बिटवीन ब्राज़ील एंड हाइती. ब्राज़ील लीडिंग बाय 3-0. सवाल हमने आपसे किया था कि हाफ ऑफ 6+6 कितना होता है. तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूज्ड है. हमने कहा है कि बेडमस या फिर बोडमस रूल आपको अप्लाई करना है. एंड अलेशनी है, थैंक यू सो मच, आपका सही जवाब हमें मिला है. और नीतिका, आपका भी सही जवाब हमें मिल चुका है. मीनव, आपका जवाब गलत है. तो दोबारा आप कोशिश कर सकते हैं सेंडिंग इन योर आंसर्स टू 5599.
1: You're listening to Chikash.

Radio Pub. दो बजकर तीन मिनट हो चुका है एंड यू आर हमिंग अलोंग विद मी जिकाश ऑन योर फेवरेट डायल 104.2 एफएम रोवा पर है। तो भाई दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें हमेशा सुन सकते हैं 24/7 टुगेदर विद आवर हम प्लस स्टेशंस। तो इसके बारे में आप तो जानते ही हैं कि जो भी आप सुनना चाहे, जब भी आप सुनना चाहे, ये सभी कुछ उपलब्ध है आपको थ्रू आवर रोवा ऐप। एंड हमारे म्यूज़िक स्टेशंस बहुत सारे हैं। हम रिवाइंड पर हम 60s और 70s एरा के म्यूज़िक आपको सुनवाते हैं। इफ़ यू एक्सक्लूसिवली वांट टू लिसन टू 80s म्यूज़िक तो हमारा नंबर 2 म्यूज़िक स्टेशन है हम 80s जुकबॉक्स। वैसे हमारा जो हम रिवाइंड है दिस इज़ आवर नंबर 1 म्यूज़िक स्टेशन। इसके अलावा फिजी से हैं आप एंड इफ़ यू वांट टू लिसन टू फिजी भजन्स का एक अलग ही प्लेटफॉर्म हमने वहाँ पर डाला हुआ है जिसे आप 24/7 एंजॉय कर सकते हैं। फिजी कीर्तन संग्रह का भी अलग एक प्लेटफॉर्म जारी है जहाँ पर फिजी के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट अवनेश चंद, सोनम बली, इसके साथ में मंजीत मिलन है, अमित कुमार, रविनेश चंद रवि, नितिन नीलेश प्रकाश, देवेन नाथ, केविन कुमार, उपरोहित प्रसाद, शैलेन प्रसाद पिंकी और जनेश प्रसाद सेवक जैसे बहुत ही उच्च कोटि के कलाकारों के कीर्तन आप 24/7 सुनते हैं ऑन फिजी कीर्तन संग्रह। राहत फतेह अली खान के लिए अगर आप इनके बड़े फ़ैन हैं तो इनका भी अलग स्टेशन आप एंजॉय कर सकते हैं राहत फतेह अली खान के नाम से, जहां पर सूफ़ी और कव्वाली ये सारे म्यूज़िक आपके लिए नॉन स्टॉप प्ले किए जाते हैं। सो रोवा ROVA आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर कई सारे अब वी आर इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन कंटेंट फ्रॉम आवर रेस्पेक्टिव अनाउंसर्स, जहाँ पर आर्टिकल्स हम छापने वाले हैं, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ आपकी सुनेंगे। तो आप रोवा ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आप तक हम पहुँच सके और हम तक आप बेझिझक जब चाहे जहाँ से भी पहुँच सकते हैं। यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल आवर शोज ऑन रोवा। पॉडकास्ट के बारे में भी हम इसी घंटे पर आपको बताने वाले हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विथ द टाइटल ऑफ द मूवी कलंक, अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ है।

2:10 हो चुका है कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ते हैं। सवाल हमने आपसे किया था, व्हाट इज हाफ ऑफ 6+6? तो हाफ ऑफ 6 इज 3 प्लस 6 इज 9। तो मेजॉरिटी लोगों ने सही जवाब दिया है। इफ यू हैवन आंसर इट करेक्टली, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन इट रियली इन सिंपल टर्म्स। 5599 पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे आपको तो मालूम होगा कि करण औजला ही इज ब्रिंगिंग हिज पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू ऑकलैंड। बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। ही विल बी हियर एट स्पार्क अरेना लाइव ऑन स्टेज ऑन द 25th of August। और यही नहीं, अपने साथ में ये लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट। क्या आप जानते हैं इनको? वैसे बेस्ट नोन बाय इकी इकविंदर सिंह सहोटा। ये एक कैनेडियन बोर्न पंजाबी म्यूजिक प्रोड्यूसर है, डीजे है, और इनको साथ में लेकर करण औजला आ रहे हैं टू सेट द स्टेज ऑन फायर ऑन द 25th of August एट स्पार्क अरेना। तो अभी आपके पास समय है टू आंसर अ क्वेश्चन अबाउट करण औजला और गेट इन टू द ड्रॉ, जहां पर आप जीतने वाले हैं एक डबल पास। ड्रॉ होगा 22nd June, मतलब कि सोमवार को इन दी ब्रेकफास्ट शो। तो अगर आप चाहते हैं एक ऑसम डबल पास फॉर योरसेल्फ और यू आर अ फैन ऑफ करण औजला, तो अभी आप हमें बताएं कि करण औजला व्हाट ईयर वाज ही बोर्न इन, किस साल में इनका जन्म हुआ है। बहुत ही यंग है एंड ये जवाब आप दे तो पहले आपको लिखना है KI फॉर करण औजला, फिर सवाल का जवाब और फिर अपना नाम। फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, KI आंसर एंड योर नेम, सेंड इट टू 5599। करण औजला का जन्म किस साल में हुआ है ये आपसे हम जानना चाहते हैं। 22nd June ब्रेकफास्ट शो ऑन मंडे, ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, ये ड्रॉ करने वाले हैं डबल पास फॉर दिस ऑसम पॉप पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर बाय करण औजला। एंड टिकट्स और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप रोवा विजिट करें, hum.rova.nz, या फिर livenation.co.nz पर आप जाए, जहां पर टिकट्स आपको मिलने वाले हैं। प्री सेल्स तो शुरू हो चुके थे 17th June को और प्री सेल्स अब ख़त्म हो चुके हैं, एंड नाउ यू कैन गेट द टिकट्स ऑन livenation.co.nz। याद रखें August 25 इज़ द डेट, स्पार्क एरिना इज द लोकेशन, और करण औजला विथ इकी आपको एक बहुत ही मेमोरेबल नाइट एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहे हैं। तो करण औजला, इनका बर्थ ईयर क्या है ये आपको जवाब देना है, KI स्पेस जवाब स्पेस अपना नाम।

0: She blazing like my reefer.
1: Yo. Big Radio Pop.

उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
3: Shop jaw-dropping 60% off winter busters and peak store-wide savings at Briscoe's massive midwinter sale. Get out of the cold and snap up winter's hottest savings. Sale ends Monday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
5: Mashallah, bahut acha, very nice.
6: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.govt.nz/floods.
7: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
8: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है।
9: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है। और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
7: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.

0: बिफोर डाइव इन टू दिस ऑसम ऑसम सॉन्ग, आपको हम अपडेट बता दें जो खेल हो रहा था बिटवीन नंद्रोंगा एंड नसीनू, ये ख़त्म हो चुका है एंड नंद्रोंगा दे हैव कम आउट विक्टोरियस ओवर नसीनू बाय 4-0. दूसरा खेल शुरू हो चुका है बिटवीन सुवा एंड रेवा एंड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द मैच सुवा हैज़ टेकन द लीड ओवर रेवा बाय 1-0. तो जुड़े रहे हमारे साथ में और भी जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे.
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

0: विंटर मैजिक आपको एक्सपीरियंस करना है। एंड हमने आपको बताया था कार्यक्रम की शुरुआती में अबाउट पीपल स्नैपिंग सम रियली कूल फोटोज, जहां पर उनके ऑल अराउंड कुछ विंटर फेरी लाइट्स लगे हुए हैं एंड दे आर कैरिंग रियली ग्रेट पिक्चर्स विद देयर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज टू मेक सम मेमोरेबल मोमेंट्स। तो विंटर लाइट कैथीड्रल ये है एट द आउटिया स्क्वायर 291-297 क्वीन स्ट्रीट में, ऑकलैंड सिटी सेंटर में। एंड फ्राइडे 5 जून से लेकर संडे 5 जुलाई के बीच में यहाँ पर आप जा सकते हैं। यू कैन स्टेप इनसाइड विंटर लाइट कैथीड्रल विच इज़ अ डेजलिंग वॉक थ्रू एक्सपीरियंस मेड फ्रॉम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी LED लाइट्स इंस्पायर्ड बाई ए स्वीपिंग by the sweeping arches of grand church windows, this luminous tunnel invites you in for a moment of warmth, wonder and a little bit of wow. तो देखने में जितना बेहाल इतना बढ़िया लग रहा है ये फोटोज़ में, उससे ज़्यादा आपको मज़े आएंगे जब यहाँ पर आप जाएंगे टू टेक सम awesome पिक्चर्स। हॉट टिप आपके लिए है कि you are there on Friday Saturday night between 6 PM and 9 PM, you will watch the neon lit dancers bringing an extra touch of magic to cathedral the area jahan par jiske bare mein hum baatein kar rahe hain. Free entry hai, just turn up and step into magic. Open 24/7 और बत्तियां हैं, lights हैं, तो obviously आपको यहां पर रात को आप जाएंगे तो you will get to witness the magic of winter. तो फ्राइडे या फिर सैटरडे नाइट को आप यहां पर जाए, एंटरटेनमेंट भी आपके लिए यहां पर मुफ्त में रहता है।
1: हम पर आपके साथ हैं चिकाश।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Driving you home.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Ma, ek chhoti hoti na?
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
8: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
9: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
10: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5k savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: सवाल हमने आपसे किया है अबाउट करण औजला. इनका बर्थ ईयर हमने आपसे पूछा है, किस साल में इनका जन्म हुआ है. एंड सिर्फ दो ही सही जवाब आए हैं हमारे पास. तो अगर आपको डबल पास चाहिए तो भाई आपको मेहनत करनी होगी. गो टू गूगल और फटाक से आपको जवाब पता चल जाएगा कि किस साल में करण औजला का जन्म हुआ था. 5599 पर आपको जवाब देना है. एंड मंडे मॉर्निंग You could be the lucky winners of double pass for Karan Aujla's P-Pop Culture concert जो ये ऑकलैंड लेकर आने वाले हैं. तो सवाल ये है, करण औजला जो एक बड़े ही awesome और awesome आर्टिस्ट है, इनका awesome शो होने वाला है स्पार्क एरिना पर अगस्त 25.

लाइफ को 25th August को, और इसके लिए डबल पास आपको जीतना है ऑन मंडे मॉर्निंग। इसके लिए आप हमें अभी जवाब लिखकर भेजे 5599 पर कि करण औजला का बर्थ ईयर कौन सा है, व्हाट इज करण औजला'स बर्थ ईयर। कै आई लिखे, उसके बाद में अपना जवाब लिखे और अपना नाम लिखकर आप भेजे हमारे पास 5599 पर। बस 3 बजे तक समय आपको हम देने वाले हैं टू गेट इनटू द ड्रॉ फॉर दिस डबल पास।

0: Radio Pub.
1: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
2: Want more points this week? It's double points week with Everyday Rewards. Scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock and Milk Run by Sunday, June 21st to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
3: Shop jaw-dropping 60% off Winter Busters and peak store-wide savings at Briscoe's massive midwinter sale. Get out of the cold and snap up winter's hottest savings. Sale ends Monday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
5: Bollywood ka asli blockbuster.
6: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Yo.
0: Radio Pub.
7: तीन बजने का है, मैं हूँ जिकाश एंड रेडियो पब पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। छः तक यूँ ही हमारा साथ यहाँ पर बरकरार रहने वाला है। FIH के अंतर्गत FIH नेशंस टूर्नामेंट जारी है और FIH हॉकी वुमेंस नेशंस कप ये नॉर्थ हार्बर स्टेडियम में अभी हो रहा है। अभी फ़िलहाल कोरिया और यूरुग्वे ये खेल रही है एंड दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर है। इसके बाद शाम 4 पर इंडिया और चिले इन दोनों के बीच में खेल होने वाला है। इसी तरह से और भी अपडेट्स हम आपके साथ में शामिल करते रहेंगे। किसी ने कहा है कि दे नीड मोर टाइम टू फाइंड आउट कि करण औजला का जन्म किस साल में हुआ था, तो ऐसा करते हैं जब तक ये गाना नेक्स्ट सॉन्ग आप सुन रहे हैं, अराउंड 4 मिनट्स का गाना है, आप पता लगाए कि करण औजला का बर्थ या किस साल में उनका जन्म हुआ, साल के बारे में पता लगाए कौन सा यह था एंड अपना जवाब हमारे पास भेजे ऑन 5599। सिर्फ तीन ही सही जवाब हमारे पास आया हुआ है। कै आई लिखे स्पेस कौन से साल में करण औजला का जन्म हुआ है और उसके बाद में अपना नाम लिखकर आप भेजे 5599 पर। एशलिन थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए, आपका सही जवाब हमारे पास आया हुआ है। जोसफ एंड अमित आप दोनों का भी सही जवाब हमारे पास पहुंच चुका है, तो आप सभी के नामों को हमने ड्रॉ में शामिल कर लिया है। और सोमवार की सुबह द ब्रेकफास्ट विथ विजय एंड पूजा इस शो में आप जीत सकते हैं अ डबल पास फॉर दिस ऑसम ऑसम शो। करण औजला किस साल में इनका जन्म हुआ ये आपको बताना है। के आई आंसर एंड अपना नाम लिखकर भेजे हमारे पास 5599 पर। नेहा थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: वीमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी पूरे पैमाने पर जारी है इन इंग्लैंड एंड आज खेल होने वाला है एट 9:30 PM बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड नेदरलैंड्स और आज सुबह खेल हुआ बिटवीन न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड जिसमें न्यूजीलैंड की जीत हुई बाय 4 runs. तो आज लेटर एट 9:30 PM ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स खेलेंगे. टुमारो कल सुबह 1:30 पाकिस्तान और बांग्लादेश आमना सामना करने वाले हैं. उसके बाद में वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड होने वाला है टुमारो एट 5:30 AM एंड देन लेटर टुमारो नाइट वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका आमना सामना करने वाले हैं. टेबल्स की ओर देखें तो पूल ए में इंडिया इज़ लीडिंग द पैक विथ 4 points. पॉइंट्स एवरेज में रन एवरेज में इंडिया आगे है. तो दे आर ओवर ऑस्ट्रेलियन वीमेंस टीम. ऑस्ट्रेलियन वीमेंस आर ऑन द सेकंड पोजीशन. थर्ड पर है साउथ अफ्रीका. बी पूल में इसमें इंग्लैंड वीमेंस टीम लीड कर रही है विथ 4 points. इसके ठीक पीछे वेस्ट इंडीज़ की टीम है विथ 4 points बट विथ फ्यूअर रन रेट्स. और स्कॉटलैंड दे आर इन द थर्ड पोजिशन. न्यूजीलैंड 4th पर है और 3 matches में से सिर्फ एक ही मैच में हमारी टीम की जीत हुई है. तो ऑल द बेस्ट टू देम फॉर देयर अपकमिंग मैचेस. सवाल जो हमने आपसे किया था तो कई सारे लोगों ने अभी हमारे पास सही जवाब भेजा है. ज्योति वशिष्ठ, भाव्या सिंह, सनी, थैंक यू सो मच, और गौरव वर्मा, नेहा और एशलिन, आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं.

0: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
1: Oh my, oh my, Bray South Road, greater than ever.
2: South Auckland's buses just became a lot better.
1: Weymouth Road, way better buses.
2: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
1: Woody, no worries. MIT, A-OK.
2: Search AT, Better South Auckland Buses for details.
1: Airport, got your transport.
2: Then turn up and go.
3: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, gown, flyman, galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mom without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
4: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5 p.m. with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
5: Stretch your budget further this winter at Mitre 10. Get toasty for less with 20% off convection heaters. And let the savings flow with 20% off Aquatica tapware. T's and C's apply. Shop these great deals and more in-store and online at Mitre 10.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तो आंडा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: FIFA World Cup 2026 जारी है, T20 Women's World Cup भी जारी है एंड अभी से ले तो अराउंड 7 दिनों में अंडर 20 रग्बी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी शुरू हो जाएंगे इन जॉर्जिया। क्या आपको इसके बारे में मालूम था? नहीं तो इस पर भी अपडेट्स आपको देंगे। वैसे इसमें 4 पूल्स है कंसिस्टिंग ऑफ 4 टीम्स और कौन कौन सी टीमें कौन कौन से पूल्स में हैं इसके बारे में जानकारी आपके साथ में हम शेयर करेंगे। न्यूजीलैंड हैज़ मेड दी कट एंड सो हैज़ फिजी एंड जॉर्जिया, ऑसम टीम एज वेल। तो कौन कौन सी टीमों का खेल कब कब होने वाला है ये जानकारी बस थोड़ी देर में आपके साथ में हम शेयर करेंगे।

0: पर आपके साथ हैं जिकाश।
1: ऑलराइट, तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर वर्ल्ड रग्बी ये जॉर्जिया में शुरू हो जाएगा 27 जून से, जिसमें पूल ए में साउथ अफ्रीका, वेल्स, जॉर्जिया और यूरुग्वे हैं, पूल बी में न्यूजीलैंड, इटली, स्कॉटलैंड और जापान, पूल सी में अर्जेंटीना, इंग्लैंड, आयरलैंड और यूएसए, प्लस पूल डी में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन एंड फिजी है। फिजी इज इन अ पडल। वेल, देखते हैं कि क्या होता है जब मैचेस शुरू होंगे। वैसे पहला मैच खेला जाएगा ऑन द 27 जून। दो मैचेस एक ही समय पर होने वाले हैं, अर्जेंटीना वर्सेस यूएसए, इटली वर्सेस स्कॉटलैंड। उसके बाद 11:30 पर ऑन द 27 जून इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड वर्सेस जापान। याद रखें, दिस इज द अंडर 20 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्टिंग फ्रॉम द 27 जून इन जॉर्जिया।

0: रेडियो पब का मज़ा ले रहे हैं। फिजी में फिजी फैक्ट, ये आज सेकंड डे में प्रवेश कर चुका है एंड सेकंड मैच ऑफ द डे इज़ बिटवीन रेयो फुटबॉल क्लब एंड सुबा फुटबॉल क्लब। और अभी थोड़ी देर पहले इन द 73rd मिनट ऑफ दिस मैच रेवा और सुबह के मध्य में खेल एक एक गोल से बराबर हो चुका है। रेवा हैज़ इक्वलाइज्ड एंड बोथ टीम्स हैव कम टू अ ड्रॉ एट द मोमेंट। अभी भी लगभग 15 मिनट का खेल बाकी है और इस पर और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे थ्रू आवर हम फुटबॉल अपडेट्स हियर ऑन हम।
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Love.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: गुजराती कॉमेडी अगर आप एंजॉय करते हैं तो गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफ अ स्टारिंग लेजेंडरी सिद्धार्थ रेंडेरिया, दिस इज सिद्धार्थ रेंडेरियाज गुज्जू भाई प्रोडक्शंस, ये लेकर आ रहे हैं एक ऑसम ब्रांड न्यू कॉमेडी जहां पर गुज्जू भाई फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट अप इन एन अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफ अ. कैसा एक्सचेंज ऑफर है? वेल, ये आपको पता लगेगा ऑन दी 3rd of July. लेकिन इस एक्सचेंज ऑफर में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होने वाले हैं एंड हंस हंस के आप लोटपोट होने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोडक्शन में बहुत सारे विटी डायलॉग्स है, बहुत सारे रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स है और गुजराती ह्यूमर तो ठूस ठूस कर भरा हुआ है. तो 7:30 PM पर 3rd July को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में सिद्धार्थ रेंडेरिया को परफॉर्म करते हुए आप देखेंगे. टिकट्स प्रीमियर टिकट्स पर आप ले सकते हैं, premiertickets.co.nz, और टिकट्स बहुत ही ज़ोरों से बिक रहे हैं. अगर आप देर करेंगे, इफ़ यू फॉल बिहाइंड, तो भाई आप टिकट्स मिस कर देने वाले हैं, क्योंकि यू गेट टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ गुजरात्स मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज फ्राइडे 3rd July 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये शो होने को है, जहां पर सिद्धार्थ रेंडेरिया को आप देखने वाले हैं.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: weather update.
1: मौसम तो ओकलैंड में ठीक ठाक ही रहने वाला है. फिलहाल आप महसूस कर रहे हैं अराउंड 16 डिग्री टेम्परेचर. ओवरनाइट टेम्परेचर आज 11 डिग्री 9 डिग्री तक जाने वाला है. तो आप अपने ज़रूरी कपड़े अपने पास ही रखें अगर आप बाहर जाने वाले हैं. 3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग इज़ एब्सोल्युटली रिकमेंडेड. अगर आप अगर आप वेलिंगटन में हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि आज वेलिंगटन में रात को वेदर कैसा रहने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होगा बिटवीन चीफ्स एंड हरिकन्स. इसके बारे में जानकारी बस थोड़ी देर में. रेडियो पब. Okay, so the great grand finale between Hurricanes and the Chiefs happening tonight in the Super Rugby Pacific Championship. And Wellington weather ke bare mein bataya gaya hai. Precipitation 0%, humidity 94% and wind 55 kilometers per hour. Abhi chal raha hai. Aur थोड़ा थोड़ा विंड वार्निंग है क्योंकि हरिकन्स खेलने वाली है. तो ये विंड वार्निंग क्या चीफ्स को अफेक्ट करेगी या नहीं, ये तो आज रात को ही पता चलेगा. क्लाउड्स विथ फ्यू ड्रिजली शावर्स होने वाले हैं. शाम के समय कुछ बारिश होगी. रात को तेज़ हवाएं चल सकती है, ऐसा बताया गया है. आई एम नॉट जोकिंग. और शायद दिस काइंड ऑफ वेदर माइट नॉट बी सूटेबल फॉर द चीफ्स टू प्ले इन. तो क्या वेदर ये एक फैक्टर रहेगा फॉर हरिकन्स विन टुनाइट? आप क्या सोचते हैं, विल इट बी द माइटी चीफ्स या फिर हरिकन्स? तो एक पोल हम ले लेते हैं. 5599 पर आप हमें ये बताएं कि आज सुपर रग्बी पैसिफिक में जो नया विजेता होगा, नॉट द क्रुसेडर्स, क्रुसेडर्स के अलावा भी कुछ टीमें हैं जो जीत सकती है, तो चीफ्स या फिर हरिकन्स, कौन सी टीम आज सुपर रग्बी पैसिफिक का टाइटल अपने नाम करने वाली है? 2026 विनर्स ऑफ सुपर रग्बी पैसिफिक कौन सी टीम रहेगी, चीफ्स या फिर हरिकन्स? अपना प्रेडिक्शन हमारे पास आप भेजें 5599 पर विथ योर नेम.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Maddie didn't think she needed a DVS system. I've got a heat pump. That should do. But it didn't do it, did it, Maddie?
2: No. My windows wouldn't stop crying condensation.
1: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
5: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
1: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
2: An award goes to Indelible Homes.
1: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
3: Kahani of Indelible Homes.
4: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
5: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है।
6: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है। और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
4: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.

लोग अपने अपने प्रेडिक्शंस भेज रहे हैं, कुछ मज़ेदार मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं। नीलेश ने कहा है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हरिकन्स जीते या चीफ्स, क्योंकि ब्लूज हैव बिन बंडल्ड आउट। आउच, दैट्स ना। ब्लूज के फैंस के बारे में कहे तो क्या कहें, जैसा ब्लूज की टीम ने खेला है इस साल उसी तरह का रिएक्शंस आफ्टर एवरी लॉस ब्लूज के फैंस देते हैं। वेरी सो लूजर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैंस, क्योंकि अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती और दूसरों की हार सेलिब्रेट करने के लिए बस कूद ही जाते हैं। तो भाई हरिकन्स और चीफ्स के बीच में कौन सी टीम आज जीतने वाली है, अपना प्रेडिक्शंस हमारे पास आप भेजें 5599 पर।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये जारी है एंड आज जो खेल हुआ बिटवीन ब्राज़ील एंड हाइती आफ्टर लूजिंग द हैंड्स ऑफ ब्राज़ील हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू बी आउट ऑफ द चैम्पियनशिप टू बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट. अब चाहे हाइती कुछ भी कर ले ये नॉकआउट स्टेजेस पर नहीं पहुंच सकती है. और ऐसा ही कुछ हुआ है विथ नसीनो आफ्टर लूजिंग बाय फोर गोल्स टू नील एट द hands of Nandronga. Nasinu are the first team out of the Fiji FAC tournament in Fiji. तो भाई बुरा मत माने Nasinu वाले, आप अकेले नहीं है. You are together with Haiti to be bundled out of the two tournaments currently being played around the world.

न्यूजीलैंड्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन यानी कि हम पर मैं जी काश आपका साथ दे रहा हूँ 104.2 FM और रोबो के जरिए आप दुनिया के कोने कोने में हमारी आवाज़ सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड मेकिंग अस द नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन फॉर न्यूजीलैंड. और अभी जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, डू नॉट गूगल और हो सके तो इधर उधर देखे भी नहीं, बस देखते हैं कि आपको आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी कितनी बड़ी

किया है। न्यूजीलैंड फ्लैग, इसमें कितने कलर्स है ये आप हमें बताएं। 5599 पर अपना जवाब दे और डू लेट मी नो कि आप फिलहाल कहाँ पर हम कर रहे हैं विद अस, और जवाब ये बताएं कि न्यूजीलैंड फ्लैग में कितने कलर्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग राइट, देखते हैं कि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी कितनी बढ़िया है। लकी अली की आवाज़ इस बार हम शामिल करने जा रहे हैं ऑन हम, और इस गीत को सुनते रहें, अपना जवाब हमारे पास आप भेजते रहें। वैसे न्यूजीलैंड फ्लैग में 4 स्टार्स भी आपको नज़र आते हैं, क्या आप जानते हैं कि व्हाट इट सिग्निफाइज कि 4 स्टार्स क्यों हैं? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? डू यू नो अबाउट दैट? अगर नहीं तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बट सवाल यह है कि न्यूजीलैंड फ्लैग में कितने कलर्स आपको मिलेंगे? 5599 पर जवाब भेजें।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5k savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
8: Bollywood ka asli blockbuster.
9: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Yo.
8: Radio Pub. You're listening to Chikash.
10: Hey, welcome back to Radio Pub, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. पाँच बजने को आए हैं, पाँच बजकर एक मिनट हो चुका है. एंड इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइंड, वेल, इन द फाइनल आवर ऑफ रेडियो पब में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ. 104.2 FM और रोबा के जरिए आप इस कार्यक्रम का मज़ा ले रहे हैं. मातरी की फेस्टिवल्स, इस पर मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for New Zealanders and for the Maori culture, and it's very important for everyone who's living in New Zealand. So, 4th May se celebrations shuru hone wale hain aur isko lekar kai jagah par kai sari taiyariyan hone lagi hain. Franklin Local Board and Matariki Performing Arts ke dwara Matariki Moments ki preparations ki ja rahi hai for the Saturday 4th of July, 10 AM se 2 PM ke beech mein. फ्रैंकलिन द सेंटर, 12 मेसी एवेन्यू, पुकेकोई, ऑकलैंड में ये इवेंट होने को है, जहां पर मातरिकी मोमेंट्स, विच इज़ ए कम्युनिटी सेलिब्रेशन, इसमें लाइव परफॉर्मेंसेस होंगे फ्रॉम लोकल यूथ, वीविंग वर्कशॉप्स और कुकी मेकिंग, तमरिकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सस्टेनेबल कम्युनिटी प्रोग्राम्स एंड मच मोर. ये सभी कुछ आपके लिए लेकर आया जा रहा है इन फ्रैंकलिन. तो यू कैन चेक आउट अ डे ऑफ क्रिएटिविटी, कनेक्शन एंड सेलिब्रेशन एज एवरीवन कम्स टुगेदर टू ऑनर मातरिकी. इसके अलावा मातरिकी नाइट मार्केट्स, नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. फ्राइडे 3rd July, सैटरडे 4th July, फ्राइडे 10th July एंड सैटरडे 11th July को मातरिकी नाइट मार्केट्स लगने वाले हैं स्काई सिटी में. स्काई सिटी पर कोना ऑफ विक्टोरिया स्ट्रीट एंड फेडरल स्ट्रीट पर, ऑकलैंड सिटी सेंटर, ऑकलैंड में. और यहाँ पर यू विल बी एक्सप्लोरिंग अ वाइब्रेंट मिक्स ऑफ मौरी एंड पैसिफिका फूड वेंडर्स, सेविंग अप डिलीशियस फ्लेवर्स फ्रॉम अक्रॉस आओतेरोआ एंड द पैसिफिक. अलोंगसाइड द काई, यू विल डिस्कवर स्टॉल्स फ्रॉम मौरी एंटरप्राइजेस सपोर्टेड थ्रू स्काई सिटी कम्युनिटी ट्रस्ट पार्टनरशिप्स, शोकेसिंग लोकल प्रोडक्ट्स, क्रिएटिविटी एंड कल्चर. फ्री इवेंट है, बस फानो फैमिली के को लेकर आप यहाँ पर पहुँच जाए एंड एवरी वन विल हैव अ ग्रेट टाइम डेफिनेटली. तो ऐसे ऐसे और भी जानकारियाँ आप तक हम बारी बारी से पहुँचाते रहेंगे. फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं दिस फाइनल आवर की विद दिस ऑसम ट्रैक बाय बादशाह एंड द गैंग.
11: दिस वन कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम आउट ऑफ द डांसर.

0: आग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
7: Oh my, oh my, Braysouth Road, greater than ever.
8: South Auckland's buses just became a lot better.
7: Weymouth Road, way better buses.
8: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
7: Woody, no worries, MIT, A-OK.
8: Search AT Better South Auckland Buses for details.
7: Airport, got your transport.
8: Then turn up and go.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: सवाल हमने आपसे किया था अबाउट द न्यूजीलैंड फ्लैग. तो इसमें तीन कलर्स है, रेड, ब्लू एंड वाइट, लेकिन चार स्टार्स भी है. तो इफ़ यू नो तो शायद आपको मालूम ही होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, न्यूजीलैंड फ्लैग में चार स्टार्स है. दीज आर फाइव पॉइंटेड रेड स्टार्स आउटलाइंड इन ए वाइट ऑन द फ्लाई राइट साइड, और टुगेदर दे रिप्रेजेंट द सदर्न क्रॉस, द क्रक्स कॉन्स्टलेशन, which signifies the country's location in the South Pacific. Ye constellation, they represent the four brightest stars in the Southern Cross, that is Alpha, Beta, Gamma and the Delta Crucis. Or the design and colors for this flag, the red stars correspond to the colors of the Union Jack and also hold cultural significance, as red is considered a sacred and powerful color in Maori culture as well. To agar aap nahi jante the, अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि क्यों हमारे फ्लैग में चार स्टार्स आपको दिखते हैं.

0: पर आपके साथ हैं जिकाश।
1: अपकमिंग मूवीज़ में देखे तो ऑन माय लिस्ट इज़ धमाल 4। इसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ इन थिएटर्स एंड आई'd लाइक टू वॉच दिस एंड आई वुड प्रिफर दिस ओवर वेलकम, क्योंकि वेलकम में तो शायद खिचड़ी पकने वाली है। खैर, आपके अपने प्रेफरेंसेस होंगे। इसके अलावा अभी प्राइम पर एक वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है राख एंड आई हैवन्ट स्टार्टेड वॉचिंग दिस। इसका ट्रेलर मैंने देखा है, इट्स क्वाइट इंट्रीगिंग। इट्स अबाउट टू टीन्स हु डिसअपीयर, डेवास्टेटिंग ए टाइट नीट फैमिली एंड अलार्मिंग द सिटी। वहीं पर अ डिटर्मिंड ऑफिसर लॉन्चेस ए नेशन वाइड सर्च प्लंजिंग इनटू अ डार्क रियल्म ऑफ ब्रुटैलिटी एंड ह्यूमन एविल। इसमें अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर की दमदार एक्टिंग आप देख सकेंगे। 8 एपिसोड्स है इन दिस सीरीज और दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon Prime एज वेल। दिस विल बी माय गो टू फॉर द नेक्स्ट वीक। इसके अलावा कुछ लेटेस्ट मूवीज लिस्टिंग्स भी है जिस पर हम बातें करते चलेंगे थोड़ी देर में।

0: Yo.
1: Radio Pub. मूवीज के बारे में हम बातें कर रहे थे तो वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होने वाली है, कमिंग फ्राइडे को. और उसके बाद द वन दैट्स ऑन माय लिस्ट इज अल्फा, आलिया भट्ट, शर्वरी बाग, अनिल कपूर और बॉबी देओल की ये ऑसम मूवी जिसको जो सुर्खियों में थी सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से इस मूवी के बारे में शूटिंग के बारे में बातें शुरू हुई थी तब से लोग इसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो 3 जुलाई को अल्फा, उससे पहले वाले फ्राइडे को वेलकम टू द जंगल एंड देन 10 जुलाई को धमाल 4 रिलीज होने वाली है. तो ब्लॉकबस्टर मूवीज होपफुली दे प्रूव टू बी, एंड काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छे अच्छे मूवीज़ एक के बाद एक निकलने वाले हैं. वैसे अभी हाल ही में आई है कॉकटेल 2 और ज़्यादा शोर नहीं मचा सकी है ये मूवी. कृति सनोन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर की मूवी ये इसी सप्ताह रिलीज़ हुई है. और पिछले सप्ताह रिलीज़ हुई थी भारत भाग्य विधाता, कंगना रनौत, स्मिता तांबे, गिरिजा औक और सुशीता थाटे की. इन दोनों मूवीज़ को 3 out of 5 स्टार्स रेटिंग अभी के लिए मिला हुआ है. आपने क्या देखिए इनमें से किसी भी एक मूवी को? काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं इन कॉकटेल 2. आई डिड चेक देम आउट ऑन यूट्यूब, तो इसे आप भी चेकआउट कर सकते हैं.

0: डेलाइट का जो ड्यूरेशन है ये कम होने वाला है. सबसे छोटा दिन और बड़ी रात होने वाली है. वहीं पर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज समर सोल्स्टिस. तो उन इलाकों में जो जो कंट्रीज समा को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं दे विल बी हैविंग द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर. तो इसके बारे में और भी बातें करेंगे हम ऑन संडे नाइट मेलोडीज़. कल शाम 6 पर मैं यहाँ पर दोबारा आ जाऊँगा आपका साथ देने के लिए. और कल एक और एक आर्टिकल पर बातें करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल वैलिडेशन. जब आप कुछ अचीव करते हैं क्या आप उस अचीवमेंट से खुश होते हैं या फिर आपकी खुशी निर्भर होती है दूसरे लोगों की वैलिडेशन से कि हाँ भाई आपने अचीव किया है. वो आपके लिए अच्छे कमेंट्स डालते हैं आपके स्टोरीज को लाइक करते हैं. सोशल मीडिया की बातें करेंगे हम. वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल मेरे हाथ लगा है जो हम आपके लिए कल शेयर करेंगे इन संडे नाइट मेलोडीज़. तब तक के लिए आप अपना भरपूर ख्याल रखें. मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. एंजॉय करते रहें. इसके अपडेट्स हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे ऑन सोशल मीडिया. और अपना ख्याल रखें. मेक श्योर यू आर सेफ इन व्हाटएवर यू डू. रास्ते पर है तो समय से पहले निकले. डू नॉट हड़बड़ी इन एनी वे ताकि आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में आए. बस अपना समय लेकर अगर देर हो चुकी है तो भाई इत्मीनान से पहुँचे. देर हो गई है लेकिन सेफली आप पहुँचे. हड़बड़ी का काम आप बिल्कुल भी ना करें. मिलते हैं कल शाम 6 पर. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. मैं हूं जिकाश. मेरा नमस्कार स्वीकार करें. हैव अ ग्रेट नाइट. हैव अ ग्रेट वीकेंड. आप सभी को.
1: You're listening to Jikash.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत? तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
6: Imagine winning $10 million this Saturday. Play in store or online.
8: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: 80s के रेट्रो गाने

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5 p.m. with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
0: From friends to lovers to chaos, get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
6: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है।
7: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है, और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
0: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
9: हाँ। अच्छा,
8: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
11: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond, and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
12: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
13: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
14: And award goes to Indelible Homes.
13: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
15: कहानी of Indelible Homes.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
2: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
2: Get $299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers, $299. Washing machines, $299. Dishwashers, $299. Ovens, $299. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: The DJ Mix.
1: DJ, turn it up.
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Media.
1: Streaming on Rover.
2: TradeDepot.co.nz. Get 299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers, 299. Washing machines, 299. Dishwashers, 299. Ovens, 299. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
3: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हां अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
7: Party up.
8: This is DJ Mix.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Shop jaw-dropping 60% off winter busters and peak store-wide savings at Briscoe's massive midwinter sale. Get out of the cold and snap up winter's hottest savings. Sale ends Monday at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.

0: शुरू उन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा।
1: Playing Bollywood's biggest hits.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
7: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
8: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
9: And who Tejal Vyas?
8: हमें आवी रहा छे हमारू नवू नक्कोर सुपर हिट कॉमेडी नाटक गुज्जुबाई नी
9: Exchange Offer.
10: Friday 3rd July Victory Convention Center पर Learning HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria नू नवू नाटक गुज्जुबाई नी Exchange Offer. हसी हसी ने लोट पोट थयवा तैयार थे जाओ। Tickets जल्दी बुक करी ले जो। Phone करो 021-244-6278 पर।
11: Nissan Big Deals सिर्फ 22nd June तक Select New Navara Models पर पाइए $5,000 तक की बचत Plus Accessories भी Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8 Backed by Nissan's up to 10-year warranty T's and C's apply
0: The DJ Mix Only on Hum I wanna see

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना स्टाइल के, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
2: गो बनाना चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
1: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: Worry? No worries!
4: South Auckland's buses just became a lot better.
3: Oh my! Oh my!
4: With better bus routes, more frequent buses, and more.
3: Grey South Road? Now even greater!
4: Search AT Better South Auckland Buses for more.
5: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ, अच्छा?
6: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह, अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हाँ।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes. Night Flying.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Playing Bollywood's biggest hits. Budget Gandhi. Night Flight.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ, अच्छा?
2: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह।
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget gaane. Hum.

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.

0: अपने जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आर्ज आपके साथ एंड वर्ल्ड कप की फीवर जहाँ कहीं भी हो रहा है एवरीवेयर एंड वेदर द कंट्री यू नो इज वेदर योर कंट्री इज इन द वर्ल्ड कप या फिर नहीं लकीली न्यूजीलैंड हैज़ मेड इट इन द वर्ल्ड कप दिस ईयर एंड दे हैड अ रियली सॉलिड फर्स्ट मैच एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर सेकेंड मैच सून. But aaj abhi Netherlands versus Sweden ho raha hai, and then 8 o'clock mein we have Germany versus Ivory Coast, and 12 p.m. mein we have Ecuador versus Curaçao, and then 4 p.m. mein we have Tunisia versus Japan.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian Comedy Night featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday 18th July 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
5: Mashallah, bahut acha, very nice.
6: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
7: Chill, sip, smile.
8: This is Sunday Breakfast.
9: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिग सेट, सो मैं हूँ आरजू आपके साथ। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप की फीवर तो एवरीवेयर है, बट ऑल्सो BIC फीजी फैक्ट भी शुरू हो चुका है सुब्रेल पार्क लबासा में। एंड संडे आज को वी हैव द डे 3 ऑफ द टूर्नामेंट, एंड सो 11 AM में वी हैव नासिनुफ FC वर्सेज BAFC, उसके बाद सुबा FC वर्सेज नवुआ FC एट 1 PM, एंड देन वी हैव लबासा FC वर्सेज रेवा FC एट 3 PM, एंड देन वी हैव नादरोगा FC versus Lautoka FC at 5 PM.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ एंड दिस इज आउट टू ऑल द फिजियंस आउट हियर लिसनिंग सो फॉर द फिजी इलेक्शंस आप ऑकलैंड में ही रजिस्टर कर सकते हो इस वेंसडे से फ्राइडे तक 24th to 26th June in Mangere Centre Park. And the address is 101 Robertson Road, Mangere. And it is available from 12 p.m. to 8 p.m. Tak. Register and make your vote count.

0: रावण में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: जबरदस्त हिट्स
2: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: हम
3: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू के साथ। ग्लोबल सेंसेशन करण ओजला इज ब्रिंगिंग हिज पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू ऑकलैंड तामाकी मिकोरो एंड इट्स ऑब्वियसली गोना बी मैसिव। ऑगस्ट 25th को एट स्पार्क अरेना एंड टिकट्स आर ऑलरेडी ऑन सेल, बट आपको डबल पास जीतना है। देन हमारी फेसबुक पेज में जाकर देयर इज अ करण ओजला पोस्ट, वहां पे आपको लाइक करनी है फो पोस्ट को एंड देन टैग योर फ्रेंड हु यू लव टू टेक एंड यू आर इन द ड्रॉ। Easy. But yeah, tickets are already on sale and it's a show you don't want to miss out.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरजव के साथ, एंड इस अरमान मलिक सॉन्ग के बाद आई विल बी टेलिंग यू सम बॉलीवुड मूवीज दैट विल बी रिलीजिंग न्यूज़ इन थिएटर्स में, सो यू कैन आल्सो बी एक्साइटेड लाइक मी.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Ladies and gentlemen.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena-dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
4: Maddie didn't think she needed a DVS system. I've got a heat pump. That should do. But it didn't do it, did it, Maddie?
5: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
4: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
7: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
8: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
13: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक, सिलेक्ट न्यू नवारा मॉडल्स पर पाइए $5,000 तक की बचत प्लस एक्सेसरीज भी। टेक एडवांटेज विद द बिग वन ऑन X-Trail एंड डिस्कवर द पेट्रोल V8 बैक्ड बाय Nissan's अप टू 10 ईयर वारंटी। T's and C's अप्लाई।
14: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
2: Brewing good vibes, Sunday style.
0: Sunday breakfast on Hum.
15: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरजव के साथ एंड टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड मूवीज जिस जो रिलीज हो चुका है या फिर होने वाला है इन न्यूजीलैंड। द वन दैट हैज रिसेंटली रिलीज एंड हैज टच्ड सो मेनी हार्ट्स एंड इज यू नो हैज बिकम अ मूवी दैट एवरीवन वांट्स टू वॉच इज मैं वापस आऊंगा। इट इज अ मूवी ऑफ इम्तियाज अली और ये मूवी की लीड एक्टर्स है दिलजीत दोसांझ और वेदांग रैना। It is a beautiful film. And yeah, if you have watched, let me know up your reviews, 5599. But new movies that will be releasing soon in the theaters is, next movie that I'm really excited for is actually Welcome to the Jungle, jo release hone wala hai is Friday ko. And obviously, it is a franchise of Welcome. Ye third, you know, installment hai. Isme Akshay Kumar hai, Sanjay Dutt, Sunil Shetty, Arshad Warsi, Jacqueline Fernandez, and Disha Patani. And July mein we have Alpha, जो कि है एक spy thriller, woman led action film, which we love. इसमें आलिया भट्ट, शर्वारी, अनिल कपूर, बॉबी देओल है। And धमाल रिलीज होगा same day में, actually same day में अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी एंड धमाल 4, obviously the name says it all. ये fourth installment है धमाल की and someone who grew up watching धमाल and welcome, I'm very excited. And we also have a romantic drama family movie जिसका नाम है तेरा यार हूँ मैं, जो 31 जुलाई को रिलीज़ होगा। ये मूवी में परेश रावल, आकांक्षा शर्मा और अमन इंद्रा कुमार है। And yeah, it's your classic romance and family drama movie. Yeah, so these are the movies you could be, you know, watching in the theater soon if you'd love to. Let me know 5599 पर आपको कौन सी मूवी के लिए आप excited हो थिएटर्स में देखने के लिए।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरिज आपके साथ. और थ्री इडियट्स की सीक्वल की न्यूज़ हवा में बहुत है. लाइक इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल एंड फाइनली एक्चुअली मूवी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैज़ सेड समथिंग. सो आई विल लेट यू नो मोर अबाउट नेक्स्ट.

0: चाहे आप हमके दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Oakland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday, 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
2: From friends to lovers to chaos, get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
3: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
4: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
2: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
6: हाँ, अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस. फोकस साडा कुछ नहीं.
6: मिसेस सिंह.
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
8: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
9: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
11: And award goes to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
12: Kahani of Indelible Homes.
13: As a baby, I was burnt in hot water.
14: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
15: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
16: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
17: Zabardast hits.
18: Shuru ho jaye to rukte nahi.
17: Playing Bollywood's biggest hits.
18: Hum.
17: Let's keep it light and bright on Sunday Breakfast.
19: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. दी FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप की आज आखिरी दिन है. सो दैट मीन्स वी गोना बी सीइंग फाइनल्स एंड सेमी फाइनल्स एंड इट हैज़ हैपनिंग इन नॉर्थ हार्बर. सो इफ यू लव टू सी इंडिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, चिले टीम और US की टीम प्ले, आज आखिरी दिन है एंड यू कैन सी द ग्रैंड फिनाले. ऑल यू हैव टू डू इज गेट योर टिकट्स फ्रॉम hockeynz.flickit.co.nz एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस माहौल.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से समय हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड मैंने एक रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि साई तम्हानकर सेड दैट शी वुड चूज द बिग स्क्रीन ओवर ओटीटी एनी टाइम. एंड आई मेक गॉट मी थिंकिंग, आई वाज लाइक एक्चुअली आई अग्री विथ हर एज़ वेल. फॉर मी आई लव वॉचिंग यू नो ड्रामाज या फिर मूवीज नेटफ्लिक्स में, बट nothing beats watching it in a big screen with big good audio, like loud audio like in the movies. But I know some people think differently, so I would love to know aapko kya lagta hai. 5599 mein let me know if you're team OTT ya fir big screen.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता,

0: सिर्फ रोवा पर द बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
0: ब्रूइंग गुड वाइब्स संडे स्टाइल
2: संडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
0: संडे मूड मीटर ऑन हम
3: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: Hit Meter.
1: आप सुन रहे हैं प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हमारे सब के साथ. आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग मॉर्निंग सो फार. एंड इफ आपको कोई बॉलीवुड की ड्रीम है या फिर यू नो समवन हु वांट्स टू मेक इट इन बॉलीवुड, देन आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज आफ्टर दिस.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
2: Shop jaw-dropping 60% off winter busters and peak store-wide savings at Briscoe's massive midwinter sale. Get out of the cold and snap up winter's hottest savings. Sale ends Monday at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक सिलेक्ट न्यू नवारा मॉडल्स पर पाइए $5,000 तक की बचत प्लस एक्सेसरीज भी। टेक एडवांटेज विद द बिग वन ऑन X-Trail एंड डिस्कवर द पेट्रोल V8 बैक्ड बाय Nissan's अप टू 10 ईयर वारंटी। T's and C's अप्लाई।
4: चिल सिप स्माइल,
5: दिस इज संडे ब्रेकफास्ट,
4: संडे मूड मीटर ऑन हम।
6: आप सुन रहे हम प्लेग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपकी साथ। एंड थ्रूविजन इवेंट्स प्रेजेंट्स अ नाइट ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव हियर इन तामाकी मकोटो ऑकलैंड न्यूजीलैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड ये होने जा रहा है अगला महीना 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में। एंड गेस व्हाट, VIP सीट्स हैव कंप्लीटली बीन सोल्ड आउट, सो यू डोंट वांट टू मिस आउट। Grab your tickets now from www.bookmyevents.co.nz. And if you're struggling to book it online, you can call 021-043-2720. And guess what? After-pay option is also available. So, yep, get ready to laugh like never before.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हूं आरजू के साथ एंड ये प्लेस जो मैं रिकमेंड करने वाली हूं यू प्रॉब्ली माइट हैव बीन देयर या फिर इट्स बीन अ व्हाइल सिंस यू लास्ट बीन देयर एंड आई वुड इट्स जस्ट अ साइन कि आप वापस जाइए क्योंकि वहां की खाना इट्स यम. सो ये है बीकानेर वाला न्यूजीलैंड. द वन आई हैव बीन टू रिसेंटली इज द माउंट रॉस्को वन. यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है. मी एंड माय फैमिली आमा कजन्स वी लव गोइंग देयर फॉर आलू पूरी और छोला भटूरे एंड पाव भाजी. दिस थ्री इट्स लाइक आई मस्ट वी ऑलवेज गेट दैट एंड ऑफ कोर्स समोसा चाट भी. पानी पूरी भी मैंने खाया है पहले एंड इट्स वेरी यमी. बट दिस सो मेनी yummy snacks and combos that you can get, and obviously there's so much sweets bhi. And yeah, even there's like makki roti and saag. There's so many varieties, and the ones that I've had and I regularly eat is chole bhature, pav bhaji, aloo puri or samosa chaat. Ye four dishes is like religiously we eat it every time we go there, and I can say guarantee it's one of the best. It's definitely my favorite. So highly recommend Bikaner Wala in Mount Roskill. But I think I just googled and I found out there's another one as well in Henderson. But yeah, if you'd love to check out, it's really yum.

0: आप दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Save कीजिए at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson with 50% off selected Systema, including deals on Karcher 18 volt Power Garden skins and Max Rack shelving. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
2: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
3: We've got double glazing.
2: Have you still got that cold, damp feeling?
4: Yeah, we do.
2: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
8: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
9: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
10: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
9: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
10: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: Sunday breakfast.
1: Zaika, to feel hope. Tickle your taste buds.
2: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरजू आपके साथ. वर्ल्ड कप की मैचेस आज भी है. टू ऑफ द ग्रुप्स हैव फिनिश्ड प्लेइंग फॉर द डे एंड वी हैव ग्रुप ई एंड ग्रुप एफ कमिंग अप सून. ग्रुप ई में वी हैव 12 PM में मैच इक्वाडोर वर्सेस कुरासाओ एंड उसके बाद शाम को 4 PM में वी हैव ट्यूनिशिया वर्सेस जापान.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट इज ब्रिंगिंग यू श्री राम लीला जो कि एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ऑन 8th of August 2026. देयर इज मोर डिटेल्स टू कम बट द टीम इज लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर. सो इफ यू आर समवन हु वुड लव टू स्टेप इन या फिर आपको कोई पता है हु कुड डू दिस रोल देन you can contact Master Ashok on 021-179-5459. That is 021-179-5459.

सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं हूँ आरज़ू आपकी सास, एंड आई एक्चुअली हैव अ क्वेश्चन आप सब के लिए, बिकॉज़ आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, एंड सो आई कैन यू नो आस्क हमारी बॉस को टू पुट मोर ऑफ दैट. सो आई एम समवन जो मुझे ऑब्वियसली आई लव माई बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड ऑल दैट, बट आई ऑल्सो लव अ लॉट ऑफ हिंदी सॉन्ग्स, लाइक हिंदी इंडी गाना, like artists from Navjot Ahuja, ya fir Anuv Jain, ya fir Pratik Kuhad, and Ritviz, to name a few. If you also love listening to indie artists, let me know 5599 mein who are your favorite indie artists. Just maybe add the keyword indie, I-N-D-I-E, and let me know aapki favorite indie singers, and I'll try to talk to the boss and add some indie songs. Kyuki, I think we need some indie songs here in Hum, especially on a Sunday, you know, just to start off very like chill and like just to, you know, have a relaxing morning. If you agree with me, आपको yeah, just send me 5599 पे आपकी favorite indie songs, indie artists, whatever you would love to, and let's make it happen.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापिस आते हैं. इंट्रोड्यूस

0: both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
1: Turn winter into progress at Rebel Sport. Save up to 40% on selected Nike, New Balance and Puma. From training gear to winter layers, score epic savings on some of the biggest brands in sport. Hurry, these deals and more only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
3: Driving you home.
4: Drive Show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया? वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप दिलजीत हो?
6: आए आए बताओगे यार।
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari good brands nahi hai.
8: Chill, sip, smile.
10: This is Sunday Breakfast.
7: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजे साहब के साथ एंड आई जस्ट फाउंड आउट कि आज एक्चुअली इंटरनेशनल योगा डे है सो हैप्पी योगा डे टू एनीवन हु डज योगा यू नो एनीवन हु लव्स योगा आपके लिए हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे एंड नेक्स्ट अप आई विल टेल यू वेयर यू कैन एक्चुअली गेट सम फ्री योगा सेशंस

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में हूँ आरज़ आपके साथ. सहजा योगा ग्लोबल मेडिटेशन इज एक्चुअली डूइंग वीकली फ्री मेडिटेशन सेशंस. जी हाँ, फ्री. एंड इट इज फॉर एनीवन, किसी भी एज, किसी भी एक्सपीरियंस, बिगिनर्स हो या प्रोफेशनल, आप यू नो यंग हो या ओल्डर, आप बच्चों हो, एनीवन इज वेलकम. एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज. एंड बेसिकली दे आर एमिंग टू सपोर्ट मेंटल वेलबींग and to help reduce stress and just, you know, promote inner peace, which sometimes we need in life. You know, like sometimes life itna jaldi se jata hai ki we need times like this to, you know, help us stop the time a little bit, make it slower and just live in the present. But if you're from Murray's Bay, we have Murray's Bay mein Outram Hall, 478 Beach Road mein, every Monday, 7:15 PM se 8:15 PM tak. If you're from Mount Albert, we have Mount Albert ki address hai, Owairaka Sea Scouts Hall, Rangeview Road mein, for every Saturday, 10 AM se 12 PM tak. Uske baad Howick mein, the Green Room, Uxbridge Centre mein, every Tuesday, 7 to 8 PM. And then we have North Court mein, 27 Lake Road, North Court mein, every Tuesday, 7 PM se 8 PM tak.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
6: And I am Tejal Vyas.
5: We are here with our new Nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
6: Exchange Offer.
4: Friday, 3rd July, Victory Convention Center par. Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni Exchange Offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa, tayyar thai jao. Tickets, jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: My kids won't shut up.
7: I'm not sure that's our problem.
8: They keep reciting lines from one of your radio ads.
7: Aw, cute.
8: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
9: What do you want, son?
10: I want me some of that real southern chicken.
8: 28 times.
7: So where are you now?
8: Eating chicken.
11: Advertise with
12: MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
13: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
14: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5 p.m. with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
0: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
15: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है।
16: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है, और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
0: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.
17: Brewing good vibes, Sunday style.
18: Sunday breakfast on Hum.
19: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट, तो मैं हूँ आरिज़ आपके साथ, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू रीड दिस मैसेज आउट फ्रॉम ज़बीना फ्रॉम मांगरे। इट सेज, हे आरज़ू, लविंग दिस शो, आर यू एबल टू प्ले कैरियत फ्रॉम चिचोरे प्लीज? ऑफ कोर्स आई कैन से दैट, थैंक यू सो मच, एंड दिस वन्स फॉर यू ज़बीना। आई होप आपकी दिन बहुत अच्छा रहे, एंड आई होप यू हैव एन अमेजिंग वीक।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स विद समय हूं आरजू के साथ एंड आई कैन सी सम डेडिकेशंस कमिंग थ्रू ऑन 5599 पर. थैंक यू सो मच फॉर टेक्सिंग थ्रू आपकी डेडिकेशंस. आज प्ले नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय शो, बट कीप सेंडिंग थ्रू 5599 पर एंड आई विल ट्राई टू स्लॉट इट इन नेक्स्ट टाइम आई एम बैक, व्हिच इज ऑब्वियसली संडे. आपकी डेडिकेशंस में संडे को प्ले करूंगी. सो या सेंड इट थ्रू 5599 पर एंड या लेट्स जस्ट गो बैक टू म्यूजिक.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजू आपके साथ थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी एंड आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे फॉर नाउ आई एम लीविंग यू विद वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ना तुम जानो ना हम

0: चाहे आप हमके ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: हम टाइम चेक. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Good afternoon, I'm Suzette with the latest at midday. National is promising to make KiwiSaver compulsory for all New Zealand workers if elected. The plan would see everyone in work required to contribute to a KiwiSaver or equivalent retirement savings scheme by 2028. Party leader and Prime Minister Christopher Luxon says contribution rates would be set at a default rate of 6% for both employers and employees to match Australia by 2032. A non-verbal autistic man missing near Canterbury's Hamner Springs has been found safe and well. 26-year-old Patrick Eager became separated from family members while walking Conical Hill yesterday morning. A man is in a serious condition after being critically injured in an assault in East Auckland. It happened on Carn Road in Panmure around 6:30 last night. A deadly strain of bird flu detected in Australia has prompted a warning for New Zealand farmers. Biosecurity Minister Andrew Hoggard believes it's only a matter of time before it arrives here.
3: We've got quite a lot of migratory birds that fly between Australia and New Zealand, so once it's established in Australia, it's probably not a great deal of time before it moves over here.
2: To rugby league, with Machinery House a sellout for the Warriors in Christchurch when they face the Cowboys in the NRL Round 16. It's the first league game at the covered stadium. Warriors back Chance Nicol Klokstad.
4: About how fast she can play inside an indoor stadium, and I think that'll be no different to the Cowboys.
2: Kick off at 4 o'clock, and the elimination final of Netball's Premiership is underway today between the Steel and Tactics in Invercargill at 4.
1: Sports News brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
5: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-site Cremations.
6: दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के किरण सिंह, रोहिणी दियो अथवा उषा राय की माताजी, रविन राय और स्वर्गीय कमल देव की सासू माँ, चार्ल्स स्ट्रीट सुवा के स्वर्गीय मनी राम की पत्नी चंद्रावती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई है. अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी. श्रद्धांजलि के लिए आप 2279-3894 पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं 9 Regan Road, पापाटोईटोई. मनीराम की पत्नी चंद्रावती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई है. अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी. श्रद्धांजलि के लिए आप 19 Regan Road, पापाटोईटोई जा सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं 2793894 पर. दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय मिस्टर जय नारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन, अजनीश जयंत, मोहिनीश एंड रोविन जोखन की मां, हॉटन स्ट्रीट सुवा फीजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे डेविस फ्यूनरल केयर, 400 Dominion Road, माउंट ईडन में किया जाएगा. अंतिम संस्कार के बाद अंतिम माउंट ईडन जा सकते हैं और अंतिम संस्कार बाद में फीजी में किया जाएगा. अंतिम दर्शन के लिए आप डेविस फ्यूनरल केयर आज जा सकते हैं दोपहर 3 बजे. श्रद्धांजलि अथवा जानकारी के लिए आप 022-332-6840 पर संपर्क कर सकते हैं. माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई है. अंतिम दर्शन के लिए आप आज दोपहर 3 बजे डेविस फ्यूनरल केयर, 400 Dominion Road, माउंट ईडन जा सकते हैं. अंतिम संस्कार बाद में फीजी में किया जाएगा. अधिक जानकारी अथवा श्रद्धांजलि के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं.
5: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
6: नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल आपके. स्वागत है यहाँ हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे. मैं रक्षा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार सा संडे आफ्टरनून शो. 12 से 6 आप और मैं यहाँ पर साथ होंगे. हमारा सफरनामा चल रहा होगा और उसके साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आज मैं कुछ दिनों के बाद वापस से एक शो यहाँ पर करने आई हूँ. तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बहुत मिस किया और